I think हामी सबैको लाइफमा चाहिँ देयर आर थिङ्स वी डोन्ट टक अबाउट. अनि कसैले अचानक आएर के छ खबर भनेर सोधिदिँदा चाहिँ कि त यु स्माइल एन्ड से ठिकै छु.

0: अधूरी सांस थी, धड़कन अधूरी थी, अधूरे हम, मगर अब चांद पूरा है फलक पे और अब पूरे हैं हम।
1: यो BFBS कुल घर रेडियो हो।